0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വരികൾക്ക് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ സംഗീതം നൽകി പി ജയചന്ദ്രനും പി ശുശീലയും പാടിയത്. ചിത്രം ബാബുമോൻ. ഈ ഗാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചത് രമ, ദീപക്, ആതിര, വത്സല എന്നിവർ മലപ്പുറം ചെറാട്ടുകുടിയിൽ നിന്നാണ്.

0: ആകാശവാണി. നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ. സമയം 5 മണി. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി പാഠം.
1: ഏ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹെ ആയി ആപ് സുൻതെ ഹെ ഹിന്ദി പാഠ്. അധ്യാപിക ഹെ പ്രമീള കുമാരി പി എൽ. ഛാത്രായം ഹെ കൃഷ്ണപ്രിയ ഓർ ജനിത.
2: नमस्ते बच्चों.
3: नमस्ते.
2: तो पिछली कक्षा में हमने एक कहानी पढ़ी थी. कहानी का नाम क्या था?
3: चटपट और नटखट.
2: कहानी के लेखक कौन थे जनता बताओ?
3: रमेश उपाध्याय.
2: शाबाश. अच्छा, कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन थे?
3: चटपट और नटखट.
2: चटपट 5वीं कक्षा में पढ़ता था और नटखट कौन सी कक्षा में पढ़ता था?
3: तीसरी कक्षा.
2: तीसरी कक्षा में. झटपट नटखट से कितने साल बड़ा था?
3: 2 साल.
2: क्या क्या नजारे देखते थे स्कूल से घर तक जाते वक्त?
3: पोखर, बरगद, खेत, बाग, नाला और नदी.
2: बहुत अच्छे. देखिए, झटपट झुंझलाता पर कुछ कह ना पाता. बड़ा था, छोटे का ध्यान तो उसे रखना ही था, लेकिन उसे लगता था कि नटखट कुछ ज्यादा ही नटखट है. रास्ते चलते रुककर पोखर के पानी के अंदर की मछलियाँ और पानी के ऊपर की बतकें देखने लगता है. बरगद के ऊपर से नीचे आती जड़ें पकड़कर झूलने लगता है. खेत में घुसकर खाने की कोई चीज खोजने लगता है. बाग से गुजरने पर आम या अमरूद तोड़ने लगता है. नाली को उधर से इधर और इधर से उधर छलांग लगाकर पार करने का खेल खेलने लगता है. नदी के पुल को जल्दी से पार करने के बजाय उसकी मुंडेर से टिककर नीचे बहती नदी को निहारने लगता है. अच्छा, तो जनता पढ़िए.
3: झटपट झुंझलाता पर कुछ कह ना पाता. बड़ा था, छोटे का ध्यान तो उसे रखना ही था, लेकिन उसे लगता कि नटखट कुछ ज्यादा ही नटखट है. रास्ता चलते रुककर पोखर के पानी के अंदर की मछलियां और पानी के ऊपर की बतके देखने लगता है. बरगद की ऊपर से नीचे आती जड़े पकड़कर चूलने लगता है. खेत में घुसकर खाने की कोई चीज खोजने लगता है. बाग से गुजरने पर आम या अमरूद तोड़ने लगता है. नाले को उधर से इधर और इधर से उधर छलांग लगाकर पार करने का खेल खेलने लगता है. नदी के पुल को जल्दी से पार करने के बजाय उसकी मुंडेर से टिककर नीचे बहती नदी को निहारने लगता है.
2: बहुत अच्छे. तो देखिए, झटपट झुंझलाता पर कुछ कहना पाता. बड़ा था, छोटे का ध्यान तो उसे रखना ही था, लेकिन उसे लगता था कि नटखट कुछ ज्यादा ही नटखट है. तो झटपट जो है झुंझलाता था. झुंझलाना मतलब क्या था? उदासी या क्रोध से कुछ बोलना. लेकिन वो कुछ माँ से कह नहीं पाता था, क्योंकि माँ कहती थी कि छोटे का ध्यान तो बड़े को रखना ही है. इस वजह से वो कुछ वापस कह नहीं पाता था. लेकिन उसे भी पता था कि वो बड़ा है, उसे छोटे का ध्यान रखना है, लेकिन उसे लगता था कि नटखट जो है कुछ ज्यादा ही नटखट है. छोटे बच्चे हैं, उसका ध्यान तो रखना बड़े का फर्ज है, लेकिन यहाँ पर उसको लगता था कि नटखट कुछ ज्यादा ही नटखट है. അപ്പൊ എന്താണ് ഝട്ട്പട്ടിന് അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടപ്പോ എന്താ തോന്നിയത്? മൂത്ത കുട്ടി തന്നെയാണ്, ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ദേഷ്യമോ സങ്കടമോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു അമർഷമോ ഒക്കെ തോന്നി. പക്ഷെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അവൻ ചേട്ടനാണ്, അവനാണ് കുഞ്ഞനിയന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവനും അറിയാം. പക്ഷെ അവൻ തോന്നിയിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നട്ട്കട്ട് കുറച്ചധികം കുസൃതിയല്ലേ എന്ന് അവന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അവനെങ്ങനെ തോന്നിയത്? രാസ്ത ചൽത്തെ രുക്കർ പോക്കർ കെ പാനിക്ക് അന്തർ കി മച്ലിയ ഓർ പാനിക്ക് ഊപ്പർ കി ബതക്കെ ദേഖ്നേ ലഗ്താ ഹെ. तो जब नटखट जो है स्कूल से घर जाता था या फिर घर से स्कूल जाता था, तो रास्ते में जो पोखर दिखता था उसके अंदर के मछलियां और बतके देखता रहता था. എന്താ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? നട്ട്കട്ട് തിരിച്ച് സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോ കാണുന്ന

0: അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे. उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया. प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया. यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया. और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची. कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है. फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है. उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है. श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है.
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प. इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द

0: डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स. वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए.
0: एआई मस्ट इम्प्रूव लाइफ, वाइडन एक्सेस, ड्राइव ग्रोथ एंड ऑल्सो हेल्प अस सस्टेन अ हेल्दी प्लेनेट. Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो. भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा.
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई. बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया. एक रिपोर्ट.
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है. मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है. सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है. महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस.
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा

0: के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस

0: के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UGV examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI